बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासें हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय। श्री हरि कृष्ण धिआइऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिऐ घर नौनि दिआवै धाए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिट कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत देख टेक फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत दा रख वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है जी। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट सच्चे पिता आप वाहिगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ

तव प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कारण न कीजै दे महावाक अनुसार। सतगुरु जीओ आप जी दे हजूर जून 1984 दे समूह शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख भाई अमरीक सिंह जी तथा समूह शहीद सिंघां दी याद विच सतगुरु जीओ सिख फैडरेशन ऑफ आस्ट्रेलिया अते सिख एसोसीएशन आस्ट्रेलिया वल्लों सतगुरु साहब जीओ आप जी दे चरण कमलों पास बेनती। सतगुरु एक अखंड पाठ साहब की आरंभता वास्ते बेनती। सतगुरु जी आप जी ने कृपालता करनी, समूह संगत दे सहयोग सदका आप जी दे स्थाना ते शहीदां दी याद दे सुबान विच श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होने हन। आप जी आग्या बख्शिश करो, 6 पौड़ियां आनंद साहब जी दे पाठ जी की अरदास भुल चुक माफ करनी, अगे तो शुद्ध ते स्पष्ट गुरबाणी पढ़न विचारन दी दात बख्शनी। सतगुरु जी संगत दियां हाजरियां दर प्रवान करनियां, आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजिर है दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउन दी आग्या बख्शिश करनी, समूह फैडरेशन नू चढ़दी कला बख्शनी, आपसी भाईचारक सांझ बख्शनी। करो कृपा सतगुरु जी पावन हुक्म बख्शिश करके श्री अखंड पाठ साहिब दी आरंभता दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन बजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दोता गावो हरी केरा मन जनी साया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल हो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना सुवनांगला समरथ स्वामी सो क्यों मन विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साची साहिबा क्या नाही घर तेरे घरता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सित साला तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम धार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए विसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान किता गुरु विटों जिस दियाँ इबड़ियाइया कह नानक सुनो संतोष शब्द धुरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित करधारिया पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुत जिन कौ से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुखो वा तत खार आनंद बाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुने सची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आप हर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजी अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आप हर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजी अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सुख कनेरी कोई ना जाने तुमरा अंत उचेती ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरा।

कहाँ बुझारत बुझे डोरा निस्कहिए तो समझे भोरा कहाँ बिसन पद गावे गुंग जतन करे तो पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू अंस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सोहा बिना चीत जो बैराई तां स्यों प्रीत बलुआ के करै भीतर बसे आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मानै मने प्रतीत काल नावै मूड़ै चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेहो आपन कर कर्म तू ठाकर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हमारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख नेरे कोई ना जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी तुम ते हुए सुआग्याकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभ छोट कै लागे आन सवाए नानक कहूँ न सी जई बिना मैं पत जाए अष्टपदी दस वस्तु लै पाछै पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावे एक भी ना दे दस पीर लै तो मूड़ा को कहाँ करे जिस ठाकुर स्यो ना ही चारा ता को कि जय सद नमस्कारा जा कै मन लागा प्रा मीठा सर्व सुख ताऊ मन मठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व तोक नानक तिन पाया गंत छापनी दे राज गात भीत बरते नंदोलास अपनी मान कशब और शाले ज्ञानी मन रोज करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै और उसका विश्वास न होवै जिसकी वस्त तिसागै राखै प्रभ की आग्ञा मान नै माथै उसते चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भात माया के हेत सर्प रोप जान नेत बिरख की छाया स्यों रंग लावे ओ बिन सह मन पछतावै जो दिसै सो चलन हाल अपट उत अन्न धार बटाओ स्यों जो लावे नहीं ताको हाथ ना बह के मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई कर कृपा नानक आप लै लाई मिथ्या तन धन कुटंब सवाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या रा जो बंधन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रत हस्ती यश वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया बेखस्ता मिथ्या द्रोह मोहभिमान मिथ्या पशु प्रकृत गमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्प कोई रह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को धावै मिथ्या मन पर लोभ लभावै मिथ्या तन नहीं पर विकारा मिथ्या बासलित विकारा बिन बूझै मिथ्या स भय सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरती साख की आर जा साच बिना के हो बसुचा बिरथा नाम बिना तनंद मुखावता कै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैण मिरथा विहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथै सब काम ज्यों कृपन कै निरार्थ दाम धन तन तेज जय कट बस्यो हर नाम नानक तां कै बल बल जाओ रहत अवर कश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु परबीन बार भेख न गाऊं भीन अवर उपदेसै आप न करे आवत जावत जन्मे मरे जिसके अंतर वसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तू भाने तिन प्रभ जाता नानक गुण जन चरण पराता करो बेनती पार प्रभ सब जाने अपना की आपे माने आपे आप करतन मेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा पाप स्याणम सगल ते रहत सब कह जाने आत्म की रहत जिस भावै तिस ले लड़ लाए तां तनंत रहा समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नान करी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिंस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जय प्रसाद छति अमृत काहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लावै तिस को सिमरत परम गत पावै जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे धाय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याये त्या वन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्या कथा वल्लभावै जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ता का जस का बीजय जय प्रसाद तुझ सब को मानै मुखता को जसर सन मकानै जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा ध्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जप दर गय मान पावै नानक पासे ती कर जावै जय प्रसाद आरो कंचन देही लिबला बोध सराम सनेही जय प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाकै मन सरनी पर ठाकुर प्राप्त

संत गए दुखन आर जा कटे संत गए दुखन जम ते ने छुटे संत गए दुखन सुख सो जाए संत गए दुख नरक में पाए संत गए दुखन मत होए मलीन संत गए दुखन सो बातें हीन संत के हते कर रखे रघोए संत गए दुखन तान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक पितर संत के दुखन ते मुख पवे संतन गए दुखन कागज लवे संतन गए दुखन सर्व जोन पाए संत गए दुखन त्रिगत जोन करमाए संतन गए दुखन तशना में चले संत गए दुखन सब कुछ चले संत गए दुखन ते स जाए संत गए दुखन नीच ने चाहे संत दुखी का था को नाए नान संत पावे तोय भी गत पाहे संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक अखन टिकन न पाए संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक रारतहीन संत का निंदक दुखी हार दीन संत के निंदक कौ सब रोग संत के निंदक कौ सदा बेजोग संत की निंदा दुख में दुख नानक संत बाब तस का भी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसा का निमित संत के दुखी का डाण लागे संत के दुखी कौ सब त्यागे संत का दुखी मांगारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म में मरे संत की दुख न सुख ते टरे संत के दुखी का नाही टाओ नान संत बाबा तले में लाए संत का दुखी अद बिच ते टूटे संत का दुखी कित गाज न पहुंचे संत के दुख का ध्यान परमाइए संत का दुखी उजल पाइए संत का दुखी अंतर ते तोता जो सास न मृत की लोता संत के दुख की जड़ किश ना ही अपने में जा पे गाए संत के दुख का वन रखन हार नान संत बाबा तले उबार संत का दुखी इमर लाए जल बिहून मछली तिर फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा जो पाप की धनी द्रव्य संत का दुखी चिटा खेला जो वाल दिल के तमा तो हेला संत का दुखी धर्म दे रह तो संत का दुखी सदमे त्या गया था किरत निंद का तो रे पया नानक जो तिस पावे सो इथे आ संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी का दरगाह मिले से जाए संत का दुखी सदा सह कहिए संत का दुखी न मरे न जीवाइए संत के दुखी की पूजा न आसा संत का दुखी उठ चढ़ निरासा संत का दुख न तुष्टा कोई ऐसा पावे तैसा कोई होए पया करत न मेटा को नानक जन सच्चा सोए साव कर तुसके ओ करने हार सदा सदा तुसका नमस्कार प्रभ की उस्तुत करो दिन रात तुसे त्यावो सास गिरास साव कछ वर्त तुसका किया जैसा करे तैसा को थी अपना खेलाव करने हार दूसर कौन कहे विचार।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमागम पारा सब त्यावह है सब त्यावह तुजी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव संतो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी। हर एको पुरख समाणा एक दाते पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी। तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवै है जो सेवै है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावै है हर त्यावै है तुद जी से जान जोग मैं सुख वासी।

एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह है। पातशाही दसवीं चौपाई हुन राशिश का काटा सीसा श्री अस्कित जगत के ईसा पोपन ब्रिस्त गगन ते पई सब हिन आन बधाई दई। धन्य धन्य लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा अखल पवन के सिरजन हारे दास जान मोहले हो उबारे। कव्यो बाच बेनती चौपई हमरी करु हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब

काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जब

जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदि अंत इकै अवतारा, सोई गुरु समझियहु हमारा। नमस्कार तिसहि को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, सिवकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बंद कियो, घट घट

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक ही पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब हीते रहते निरालम, जानत बेर भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाह निन मानत, महा मूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है देती, वर्णत भिन्न भिन्न तो हितेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं पुपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बाहर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हूँ वह बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करूरन काता। जे अस्तु तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कुल को एक बार तय है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ता

कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता किल बिख सगल देह को हरता दुष्ट दोखियन को क्षय करता श्री अस्तुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़ेला सुनै गुंग जो जाहे सुरसना पावै सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवै दुख दर्द पाव निकट न तिन नर के रहै हो जो या की एक बार चौपाई को कहै चौपाई संबत सत्रह है सहस पणिजय अर्ध सहस पुन तीन कही।

पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौ आँख तरे नहीं आन्यों राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यों सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यों।

क्या नाहीं करती रह करतन तेरे सब किश है जिस देहि सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम दिन कै मन वसिया वाजी शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं करती रह साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसिया दिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो हों जिस दिया इह वडियाइया कह नानक सुनहो संत शबद धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शबद तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुजिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुख होवा

नानक कहु न सिजई, बिन नावै पत जाय। अष्टपदी दस वस्तु ले पछ पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै। एक पी न दे दस पी हिरले, तो मूड़ा कहु कहा करे। जिस ठाकुर

तेरी वड़िया कोई नाव न जाने मेरा। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाउ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याय जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौने दे आवै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

ताहु मल जन्म जन्म दी कटिए सज्जन सच्चा पातशाहो सिरसा हांदे साहो।

फिर जाने लगा ते पहरेदारा ने झाड़ पाई सुथरिया किन्नी बार तेनू कहना पवेगा अज तो बाद तू अंदर नहीं जा सकता तेरे पास भेटा होवेगी मत्था टेकन वास्ते अंदर जा सकता सुथरे दे नेत्रां चो जल वहन लगते मन भर गया सारी रात लंघ गई दूजा दिन होया अमृत वेला हुण मन बेबल है केड़ा वेला होवे सतगुरां दे दीदार हो नेता पर सतगुरां दे चरणां विच रहण वाला अज दो दिन दर्शन ना होए नेत्रां चो जल वहन लगते पर बार बैठे हां मन विच एक ख्याल उत्पन्न होया मना जे झूठ भी बोलना पवे सतगुरां दे दीदार करन वास्ते ते कोई अर्ज नहीं अपने वास्ते झूठ तां नहीं बोलना दीदार वास्ते झूठ बोलना है मन विच फुरना बन गया जे माया नहीं प्रसाद नहीं ते एक रेत दी पंड बन लैना रेत दी पंड बन्नी सिर ते दूरों आवाज देंदा जांदा कहिंदा राह छड्ड दिओ गुरु के लंगर वास्ते खंड ले जा रेत दी पंड सिर ते चुकी पहरेदार परे हट गए सुथरा अंदर लंघ गए जदों अंदर लंघ गया सतगुरु जिथे बैठे सन थोड़ी दूर ओ रेत वाली पंड रखी ते सुथरा पंड दी परिक्रमा करन लग पिया बार बार पंड नू नमस्कार करदा बार बार परिक्रमा करदा मत्था टेकदा सेवादारा ने तकिया सतगुरु नू बेनती की सतगुरु आ तकिया जे सुथरा आप सिंघासन ते बैठे हो ते पंड नू मत्था टेक रहा है साहब कहन लगे सुथरे अज की हो गई सुथरा पब्बा मार के रो पिया कहन लगा पाछा अज इस पंड नू मत्था ना टेका ते किनू टेका अज इहदी परिक्रमा ना करा ते किहदी करा पाछा अज तेरे पहरेदारा ने पाबंदी ला दित्ती के तू दीदार करन अंदर नहीं जा सकदा तेरे पास भेटा होवे ते अंदर जा सकदा है पाछा मैं कित्थों तन लिया कितों प्रसाद लियावा अज तेरे पहरेदारा नू झूठ बोल के आया कि गुरु के लंगर वास्ते खंड ले जा रहे हैं पाछा रेत की पंड है अज ये सदका तेरे दीदार हो गए ये सदका अज मैं अंदर आके तुहाडे चरणां विच सेवा कर सकदा पाछा इहनू मत्था ना टेका ते किहनू टेका जिहदे सदका तेरे दीदार हो गए गुरु कलगीधर पातशाह ने सुथरे नू गलवक्कड़ी विच लै लिया प्यार कीता कुट के कहन लगे अच्छा जा सुथरिया तेरी ये भेटा भी प्रवान पावे तू रेत भी पंड लैके आया जा अज तो बाद लंगर विच इसे रेत नाल पांडे मांगे आदार हो गए आओ भाई अज आप भी मांग लीए मेरे हर प्रीतम

प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से भवताजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे दिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे दिन अनंत कनेरे, संत कृपा दे अंदिन जाग, प्रभु के सिमरन कार्य पूरे, प्रभु के सिमरन हर गुणवाणी, प्रभु के सिमरन निचल आसन, प्रभु के सिमरन आन चुनका, सिमरे से जन जिन को प्रमया, हर सिमरन कर भगत पटाए, हर सिमरन पर सिज्जति दाते, हर सिमरन तारी सब

0: हर जन के मालक जीना,
1: हर जन जन को आप कर देना,
0: हर हर जन के ओट स्थानी,
1: हर प्रताप जन अवर न जानी,
0: ओत पोत जन हर रस राते,
1: सुन समाग नाम रस माते,
0: आठ पैर जन हर हर जपे,
1: हर का भगत भगत नहीं जपे,
0: हर की भगत मुक्त बहु करे,
1: नानक जन संकेत धरे,
0: हर जाते हो हर को नाम,
1: नाम देन हर हर गुण गाम,
0: सबते उत्तम हर की कथा,
1: नाम सुनत दर दुख लता,
0: नाम की महिमा संतरित बसे,
1: संत प्रताप दुर्सम नसे,
0: संत का संग बड़ पागी।

0: कर्सासर सिमरतव के आन
1: व्यास कर्म धर्म क्रिया
0: सगल त्याग मन मध्ये फिरया
1: प्रकार किए बहु जतना
0: कौन दान हो मैं भरतना
1: वर्तने
0: करे बहु भाती
1: राम नाम विचार
0: नानक गुरमुख नाम जप एक बार
1: नानक
0: गुरमुख नाम जपत गत पाए गर्व मान मन ते उठे मन की मैल न दानते जात कबू न बिख्या डरे शुद्ध गा होए काची पीत नानक नाम उदरे पद पाप उच अनेक जत का दर्शना द्रापे

0: नानक बोले सहज पाए साजना की सेवा लागे
1: हर नाम दे सब गावे
0: साथ संगे हो मैं छोरे
1: साजना की सरनी पर नानक ताके बलबल जैसा साथ संगा का मिठे रंगवान सुगनी सते ऊंचा हर नाम ते मुझे गढ़ छीना सगे सगल सृष्ट साजना नानी

सर्व टाके अंतर्जामी आपन संग आप रब राते नानक अवर न जानस कोए हर को नाम जप निर्मल करम साहस संग गुरमत मल हिरिया हर का नाम जपो जिए सदा हर को जसुन रसन बकानी।

जतन करे तो भी सर्वभंग नहीं हो तुम गवन। नानक तुम्हारी कृपा तरै जो बैराई तासु प्रीत अनंत केल माया रंगस है काल लावे मूढ़े चीत झूठ विकार महालोक द्रोह नानक रात में।

एक वस्त्र कारण बिखोड़ गवावे, तो मुड़ा को कहा करे, ताको कीजे सद नमस्कारा, सर्व सूक्ताऊ मन उठा, सर्व थोक नानिक तिन पाया, हाथ पीत बरते अनदुलास, अज्ञानी मन रोस करे, और उसका विश्वास न होवे, सबकी आज्ञा माने माथे, नानिक साहेब सदा दयाल, सर पर होवत जान अनेत, ओ बिन से ओ मन पछतावे।

मिथ्या में ममता माया मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या हस्पद दर को हिरे मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या बासुलेद विकारा सफर दे नानक हर हर नाम ले साज बिना के हो सूचा मुखावत आके दुर्गंध मेघ बिना जो खेती जाए जो के पन के निरार धाम नानक ताके बल बल जाओ मन नहीं प्रीत मुखों गंडलावत बाहर बेकना काहू भीन आवत जावत जन्मे मरे तिसकी सीख तरे संसार नानक कुंजन चरण पराता अपना किया आपे माने किसे दूर जनावत किसे बुझावत मेरा सबकर जाने आत्म की रहत शांत अनंतर रया समाए जिस कृपा करी निमक निमक।

सरस्वती। तिस ठाकुर को रख मन माए, तिसको सिमरत परमगत पावे, तिसे ध्याय सदा मन अंदर। आठ बार सिमरो तिस रसना, नानी सदा ध्याइये ध्यावन जोग। तिसे त्याग का तवर लुभावे, मन आठ बार ताका जस गावीजे, मुक्ता को जस असन बखाने। मन सदा ध्याय केवल पार ब्रह्म, नानक पद से तीगर जावे। लिवलावो तिस राम स्नेही, मन सुख पावे हर जस करत। मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके, मन सास सास सिमरो प्रभु छे। नानक ताकी भगत करे, मन तिस में क्यों आलस कीजे। मन तिस पब को कबो न बिसारी, राग प्रवे प्रभ अपने मना। उठ बैठ सत से दियाई, या हुआ नानक तेरी रखे। मन आठ पर कर तिसका ध्यान, तिस पब को साथ साथ चितारी। सुपब स्मर सदा अनूप, सुपब स्मर सदा दिन रात। गुर प्रसाद नानक जस कहे, जय प्रसाद पेखे विस्माद। जय प्रसाद सुख सहजे वसना, जय प्रसाद संपूर्ण फले। जय प्रसाद सुख सहज समावे, गुर प्रसाद नानक मन जागो। तिस पब को मूल न मनो विसार, रेमन मूर्त ताको जाप। तिसे जान मन सदा अजूरे, रेमन मेरे तू तासी उराच। नानक जाप जपे जप सोए, आप गावाय सो हर गुण गाओ। प्रभु दयाते कमल विगास, प्रभु दयाते मत उत्तम हुए। आपो कछु न कि नहु दया।

सा संग सगली खोत सात के संग प्रकटे सो ज्ञान सात संग सब होत निवेरा सात के संग एक ऊपर जतन नानी सात की शोभा पर माय समानी सात के संग सदा पर फूल सात संग अमृत तस गुंजा सात के संग मनोहर बैन सात संग अस्तित मन पावे सात संग नानी प्रभ सुप्रसन्न साधु के संग महापुनीत सात के संग न बींगा पैर सात संग जाने परमानंदा सात के संग तजे सब आप नानी सात प्रभु बनाई सात के संग सदा सुख पावे साधु के संग अजस है साधु के संग महल पहुँचे सात के संग केवल पार ब्रह्म नानी साधु के कुर्बान सासंग साजन मीत कुटम निस्तार है जिस दन ते सबको वरसाव है सात के संग शोभा सुरदेवा सात संग अमृत गुण गायन नानक सात के संग सफल जन्म दर्शन बेटत होत निहाल सात के संग नरक पर हरे सात संग बिछड़त हर मेला सात के संग न बिरथा जावे नानक उदरय सात सुन रस है सात संग हर के गुण गाओ सात संग सर पर निस्तर है साधु के संग गट गट डीठा नानक साध बेटे संजोग जिता सुने तेता बख्याने साथ की उपमा रही भरपूर साथ की शोभा सदा बेअंत साथ की शोभा मूस्ते ऊंची।

जैसे जल में कमल लेप, जैसे सूर सर्प को शोक, जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान, जू बसदा को खोदे को चंदन लेप, नानक जू पावक का सहज स्वभाव, जैसे मैल न लागे जला, जैसे धरु पर आकाश, ब्रह्म यानी के नाय अभिमान, मन अपने हैं सबके नीचा, नानक जिन पर बाप करे, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, नानी ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, नानी ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी अम्बु त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदानंद, नानी ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, नानी ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मनवाए, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, नानी ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,

निमक निमक ठाकुर नमस्कार नानक अपर सगल निस्तार मिथ्या नाई रसना परस भर्तृ रूप न पेखे नेत्र करन न सुने काहू की निंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरे इंद्रि जित पंच लोक तेरत वैष्णो सोज सुपर सुप्रसन्न कर्म करत होवे ने कर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचे मंतन अंतर सिमरन गोपाल आप दिड़े अवरे नाम जपावे भगवती भगवंत भगत का रंग मनते बिनसे सगला भरम सासंग पापा मल खोवे भगवंत की टहल करे नित नीत हर के चरण हृदय बसावे सो पंडित जो मन पर बोधे राम नाम सार रस पीवे हर की कथा हृदय वेद पुराण स्मृत पूजय मूल चौवर नाको देव उपदेश बीज मंत्र सर्प ज्ञान जो जो जपे तिसकी गतोए कर कृपा अंतर उदारे सर्व रोग का औखद नाम काहू जुगत किते न पाइये धर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास आत्म राम तिस नदरी आया सदा निकट निकट हर जान अपने दास को आप कृपा करे सगल संग आत्म उदास सबकी आज्ञा आत्म हितावे तैसा हरक तैसा उसोग तैसा सुवरण तैसी उस माटी तैसा मान तैसा अभिमान जो वर्ताए साई जुगत पार ब्रह्म के सगले ठाव आपे करण करावन जोग पसरो आप हो अनतरंग जैसी मत दे तैसा परगास।

कई कोट आचार विवारी, कई कोट बन रमे उदासी, कई कोट तपीसर होते, कई कोट कब का विचारे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट अंधा ज्ञानी, कई कोट अभिगातम निकोर, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट परदेश ब्रह्माए, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट राजे रसभोगी, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट देव दानव इंद्र से छत्र, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार, कई कोट वेद पुराण स्मृत और शास्त्र, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट गिरी मेल सुवरण थी वे, कई कोट भूत प्रेत सुकर्मी गाच, सब भरपूर, कई कोट नरक सुर निवासी, कई कोट वो जोनी फिरे, कई कोट घाले थक पाए, कई कोट माया में चिंत, नानी सब कुछ प्रभु के हाथे, राम नाम संति लिंग लागी, आत्म में पार बम लानते, तिनको मिलो प्रभु अविनाश, पार बम तिन लागा रंग, नानक तेजन सदा धन धन, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई जुगत तीनों विस्तार, सदा सदा एक ही कंकार, प्रपते हुए प्रभु माय समात, आपे आप नानक प्रभु सोए, तिन हुआ तातम प्रकाश, सदा निहारे को नेत्रे, अमर भय सत सदी जीवे, आत्म रस सुख सह समाग

ज्योतिष भावे सोई होग, अंत नहीं किस पारा भारा, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, नानक सब में रया समाई, प्रभावे ता पाथर त्रावे, प्रभावे ता हर गुण बाखे, आप करे आपन विचारे, केले विकसे अंतर जामी, नानक दृष्टि अवर न आवे, ज्योतिष भावे सोई करावे, ज्योतिष भावे सोई करे, ये जानत आपन ना बचे, निमक माए चार कुंड पे रावे, नानक तेजन नाम मिले, पार ब्रह्म गरीब निवाज, तिस तत का दैस दिस प्रगटावे, ताका लेखा न गने जगदीश, गड़ गड़ पूरन ब्रह्म प्रकाश, नानक जीवे देख बढ़ाई, करंक रावण सर को नाथ, ज्योतिष बाबे सोई पंथियो, कमो सो गरक रंग असै, कमो आकाश प्याल, नानक आप मिलावन हार, कमो सोए रहे दिन रात, कमो सर की होत रवाल, कमो बेखारी नीच का साजा, कमो बला बला कावे, गुरु प्रसाद नानक सच कहे, कमो मोन धारी लावे ध्यान, कमो से साधक मुख ज्ञान, अनेक जोन भर में बरमिया, युप भावे तिमें नचावे, नानक दूजा अवर न कोई, उस स्थान ते बौर न आवे, उस स्थान का नहीं विनाश, सदा बसे पार्वम के संग, तुजोति संग जो समाना।

0: सो नर पाति होवत स्वान सो वत विष्ठा का जंत जनम मरे भो जोन ब्रह्मावे सो मूर्ख अंधा ज्ञान नानक गया मुकत आगे सुख पावे तृण समान का संग न जावे पर भीतर ताका होए विनाश किन्मय होए जाए बसमंत धर्मराज तिस करे खुवारी सोजन नानक दरगे परवान हम पावे सगले बिरथारे नायक सुर फिर अवतार हर दरगे को कैसे गवे इसे बलाई निकट न आवे और नानी ताकि निर्मल सोए तब इसको सुख नाही कोई तबला गर्भ जोन में फिरता तबलग नेचर नाही चीत तबलग धर्म राय देश जाए गुरु प्रसाद नानी खो छूटे त्रिपद नावे माया पाछे पावे नैतिक तावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नाई को राजे
0: सुपन मरोड़ बिरथे सब काजे
1: सर्व सुख होए
0: बड़बागी किसे प्राप्त होए सदा सदा नानी कर जाप इसके हाथ कहाँ विचार आपे आप आप प्रभ सोए सबते दूर सबों के संग आपे एक आपे अनेक नानी सदी रह समाए आपे रचिया सबके साथ सब कुछ उसका करने हार तान तनंतर एक है सोए
2: उसे पेन कहाँ निचोए तान तनंतर एक है सोए
1: अपने चल तप करने हार
0: ना बहुत करेंगा पार नानी कीमत का न जाए गुरु प्रसाद के ने वक्यानी कोट मदे के ने बिल्ले चीना अत सुंदर अपार रूप
1: निर्मल निर्मल तेरी वाणी
0: सुनी श्रवण वक्यानी

0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे,
1: संत के दुखन सुख सब जाए,
0: संत के दुखन नरक में पाए,
1: संत के दुखन मत होए मलीन,
0: संत के दुखन शोभा तहीन,
1: संत के हृदय को रखे ना कोई,
0: संत के दुखन तान भ्रष्ट होए,
1: संत की पाल कृपा जे करे,
0: नानक संसंग निंदक भीतर है,
1: संत के दुखन ते मुख पवे,
0: संतन के दुखन काग जुलवे,
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए,
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
0: संत के दुखन सबको चले,
1: संत के दुखन ते सब जाए,
0: संत के दुखन नीच नीच आए,
1: संत दुखी का थाव को नाए,
0: नानी संत बाबे ताओ भी गत पाए,
1: संत का निंदक
0: हिंट कर न पाई,
1: संत का निंदक
0: परमेश्वर मारा,
1: संत
0: का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सदा बिजोग, नानी संत बावे ता उसका भी होई मोख, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को सब त्यागे,
1: संत
0: का दुखी सदा भिखारी, संत की दुख ना सुख के डरे, नानी संत बावे ता ले मिलाए, संत का दुखी किते काज ना पहुँचे, संत का दुखी उजड़ पाइये, जो सास बिना मिल तक की लोथा, आपन बीज आपे ही खाए, नानी संत बावे ता ले उबार, जो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए, जो पावक ईंधन नहीं द्रापे, जो बुआर तिल खेत माए दुएला, संत का दुखी संत मित्या कहते, नानी ज्योतिष बावे सोई थिया, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी न मरे न जीवाइये, संत का दुखी उठ चले निराशा, जैसा बावे तैसा कोई होए, नानी जाने सच्चा सोए, सदा सदा तिसको नमस्कार, तिसे दयाओ सास विरास, जैसा करे तैसा गोतिया।

मानु की तू प्रीत त्याग सर्व निरंतर एक को सोए गैर गंभीर गई सुजाना कृपाण दान दयाल बख्शंद नानक के मन एवं राव जो कर पाया सोई होग तिसका मंत्र जाने होर सर्व तोक सुनिए कर ताके तप में तपी सर ग्रस्त में भोगी नानक तिस पुर का किने अंत न पाया सगल देव हारे अब गाय सगल परवई अपने सूत जन दास नाम ध्यावे से जन्म मरे फिर आवे जे जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना बेक करे एक रंग प्रभु अपनासी एक अंकार पूरयो पूरन सब खाए अपनी कीमत आपे पाई जब जब जीवे नानक हर नाव नाम के दारे खंड ब्रह्मंड नाम के दारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के दारे सगल आकार नाम के संग उदरे सुन श्रवण नानक चौथे पद में सुजन गत पाए पुरख सत केवल प्रधान सत पुरख सब माए समाणी मूल सत सत उत्पत जिसे बुझाए तसे सब बली विश्वास सत नानक गुरते पाई सत तेजन जाके हृदय प्रवेश नाम जपत ताकि गत होए आपे जाने अपनी मिदगत अवर न बूझ करत विचार नानक ज्योतिष भावे सो बरतिया जिन बुझा तिसाया स्वाद गुर के वचन पदार्थ लय जाके संग करे संसार जन के संग

जप नानी प्रबल गुडाणी पी अमृते मंत्र पिए जिसके चवर नहीं दिष्टाया नामो सुकर नाम का संग मंतन नामे नाम सुमाने कौन आनी जन के सत्काम प्रभ अपने जन की दात प्रभ अपने सुरय समाये प्रभ अपने का हुक्म पछाने जिसका गुण कह एक न जानो कौन आनी से ही जन पूरे मंतन अपना तीन जन दे सोजन सर्व थोक का दाता जिसके दर सब पाप मिटावे तिस जन की तू सेवा।

0: अंधकार दीपक प्रगासे तपत माए ठांड वरताई जन्म मरण के मिटे अंधे से
1: साधु के पूर्ण उपदेशे
0: भव चुका निर्भव हो बसे
1: सगल व्याध मानते कह न से
0: इसका सातिन कृपा दारी
1: सा संग अपना मुरारी
0: थित पाई चुके ब्रह्म गमन निर्गुण आप सरगुण भी होई
1: कला तार्जन सगली होई
0: अपने चरित पर बाप बनाए
1: अपनी कीमत आपे पाए
0: अरविंद दूजा नाही कोई
1: सब निरंतर एको सोए
0: पोत रव्या रूप रंग
1: प्रगास आदि के साथ

एक सिमर नाम आधार, चरण कमल रिद में उद्धारो, दृढ़ कर गौ नाम अर्वत, संजना का निर्मल मंत, सर्व रोग नानक मिट जाए, सोदन हर सेवा ते पावे, सो सुख साधु संग परीत, सासु बाबा जन की सनी, रोग उठे हर औखध लाए, जप नानक दरगह परवान, दैदिस दावे आवे ठाए, जाके हृदय बसे हर सोए, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, भगत भाए आत्म पर घास, कौ नानक काटी जम फांसी, जन्म मरे सो काचो काचा, आप क्या शरण गुरुदेव, हर हर सिमर प्राण दार, सिमर सासन देव विचारे, मन मन छत नानी फल पाए, संग न चालस तेरे दना, सुत मीत कुटम अर बनता, राज रंग माया विस्तार, असस्ती रतस

0: कर कृपा देवो हर नाम पार ब्रह्म सदा पूर
1: सदा सदा
0: प्रभु
1: के
0: तुम्हें ध्यावो
1: भक्त
0: करो प्रति नित नीत
1: नानक
0: मांगे नाम पवसार हर रस पावे बिरला कोई पूरन पुरख नहीं डोलाने उपजे चाव साथ के संग अंतर पर का संदेह लाग नानक नाम रते सुख होए सतगुर ते निर्मल मत लई सेवक कीनो सदा निहाल जन्म मरण दुख भ्रम गया गव रहा सत्संग हजूरी नानक भक्ति नाम सुमाए
1: सो
0: क्यों विसरे जे किया जाने
1: सो क्यों
0: विसरे जे जीवन जिया गुर प्रसाद को बिरला लाखे जन्म जन्म का टूटा गंड प्रभु अपना नानक जन ध्याया आन त्याग जपो हर नाम आप जपो रे नाम जपाओ मन भक्ति तनो सीचार बुढ़े जात पाए विश्राम नानक नाम जपो गुणतास मंथन अंतर ही सुहाओ मन से साचरण दोए बिरला को पावे संग गुरु प्रसाद नाम जप लिया नानक रहा सर्व समाए भगत वचन सदा कृपाल सर्व गटा करत पतपाल भगत जना के प्राण आधार भगत भाई लावे मन हीत नानक तुम्हारी शरण पुरख भगवान एक नमक हर के गुण गाए हर के नाम की कथा मन भाई रसना जपती हर हर नीत हृदय वसे पूरन गुरमंत।

पापुन तब कते होता तब वै विरोध के संकमात तब हरक शोको किसे व्यापत तमोक आके सुवत भरम नानक करने हार न दूजा तब अनमुगत को किसको गनी तब नरसुर को कौन अवतार तब शिव सगत को कित ठाए तब कौन निडर कौन कत डरे नानक ठाकुर अगम अपार तय जन्म मरण को का विनाशन तब जम की त्रास को किस हुए तब चित्रगुप्त किस पूछत देखा तब कौन छूटे कौन बंधन बांधे नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा तैमिन बैल को क्या दोता ए कौन को मान कौन अभिमान तै छल छिद्र लगत को कीस से भू कौन तिरतावे नानक करते का नाय सुमार तब कौन माय बाप मित्र सुत भाई तै वेद कते का कोचीन तब सगन अब सगन का विचारे ते कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा नानक अपनी का जानो आप हुआ किसे व्यापक माया ते गुण का नाही परवेश ते कौन अचिन किस लागे चिंता ते कौन कते कौन सुनने आला नानक आपस को आप ही पहुंचा ते गुण में कीनो विस्तार ओ नर को सर्वंशावत ओमे मो परम वै भार अनेक प्रकार की ओब ज्ञान के संकोचे तो नानी देखे जय पसरे पासा संप्रताप उनकी शोभा नो बनी आपे रस भोगन जोग जिस बावे तिस्केल के

नाम प्रभु का लागा मीठा। अनेक रंग नाना दिष्टाए देही में इसका विश्राम, कह न जाई अचरज विस्माद। नानक तिजन सो जी पाए, गड़ गड़ व्याप रया भगवंत। सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। चार कुंड जिसे समाए, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। शशि और सूर्य नक्षत्र में एक, आप अडोल न कबो डोल। मोल न पाइये गुण अमोल, दार स्वामी ओ थोत। नानक में विश्वास, संजना के हृदय सब धर्म। सर्वव्यापी राम संरचन, सत वचन साधु सब कहत। करण करावन हार पर जाने, नानक दर्शन दे समोई। तिस वक्ते सगली उत्पत, तिस भावेता एक अंकार। जिस भावे तिस लय मिलाए, आपे आप भरपूर। नानक तिस जन आप बुझाए, सर नैन आपे कनारा। आपन जस आप ही सुना, आज्ञाकारी कीनी माया। सब जो कुछ कहना सो आपे कहे, नानक जा भावे तले समाए। और कहो कि नहीं कुछ करा, आपे जाने अपने जी की। ओत बोत आपन संग्राज, दूसर हो तो सो जी पाए। गुरु प्रसाद नानक की जान, आप लाए लय प्रभु सोए। जीवन मुकल जिस हृदय भगवंत, जिस प्रसाद सब जगत राया। जन के संचित आवे।

सरस्वती पूरे गुर का सुनो उपदेश सास सास सिमरो गोविंद आस अनित्यागो तरंग आप छोड़ बेनती करो अर्दन के भर ले भंडार प्रेम कुशल सहजानंद नरक निवार उदारो जियो चित चित्तो नारायण एक गोपाल दामोदर दीन दयाल सिमर सिमर नाम बारम्बार उत्तम सलो सात के वचन सुनत कमावत होत उदार सफल जीवन सफलता का संग जय जय शब्द नाद बाजे प्रकटे गोपाल मांत के माते सरन जोग सुन सरनी आए मिल गए बहर भय सबरेन सुप्रसन्न भय गुरुदेव आज अंजाल बिकारते रहते गर्भ सा दया प्रभधारी सावधान एकागर चीत जिस मन बसे सोत निदान प्रदान पुरक प्रकट सब लोए और न हो गए आवन जान नानक जिसे प्राप्त होए बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान सबके मन सगल ते उदास समदर्शी एक दृष्टिता मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने।

राम कली की वार राय बलवन तथा सत्य डूमा की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नाव करता कादर करे क्यों बोल होवे जो की उदय नानक राज चलाया सच कोट सताणी नीव दे मद गुर आत्म देव दी खड़ग जोर।

सतगुरु परचायो गुर परचे परवान राज में जोग कमायो तन तन गुर तन अपर सर सुपर परायो गुरु गम परमान अधर जर्यो सर संतोख

0: सर संतोख समायो गुरु अर्जन कल उचरे ते सहज जोग निज पायो।
1: वाहिगुरु जी अम्यो रसना बदन बरदात अलक अपार गुरु।

सुन सहज निज कर सवारयो, हर नाम लाग जग उधरयो, सतगुर हृदय बसायो, गुर अर्जन कल उचरे, ते जन के कलस दिपायो, हर नाम लाग

0: है अजाद है
1: अजन्म है अवर्ण है पूत है अपर्ण है
0: अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है
1: अमीक है रफीक है अतंद है बंद है
0: अबूझ है असूझ है अकाल है अजाल है
1: अलहा है अजहा है अनंत है महंत है
0: अलीक है निर्सरीक है निर्लंब है असंभ है।

0: नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता
0: अपेक्षीय परमीय पोग्य पुक्ते
1: नमो जोग जोगेश्वर परम जुगते।

0: एकमकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं कब्यो बाज बेनती चौपाई, हमारी करो हाथ दे रचा, पूर्ण होए चित की इच्छा,
1: तचन मारे हमारा जान करो प्रतपारा,
0: हमारे दुष्ट सबै तुम काबो, आप हाथ दे मोहे बचावो,
1: सुखी बसे मोरो परवारा, सेख सिख सबै करतारा,
0: और चानज करते करिए सब बैरन

0: को कर पाहन अनुमान तुमा मूड कछ पेद न जान
1: माँ देखो कैस दास निरंका कच न पिव
0: आप अपनी बुध है जीती पनत पिन पिन तो ते
2: तुमरा खान जाय बसा रखे बिस जा प्रथम संसारा
0: एक रूप रूप स्वरूप रख पे और आप की पुप
2: आंधे चेर से देश की नी उत्पुष कान बोर जदीनी
0: ओ फूल राजा है बैठा को सुंट पे संकेर गैठा
2: सगरी सृष्ट काय चंब वाच गार स्वरूप से अंब
0: अवर इच्छा मेरी तुम करो सिखो बाण सिख संग करो
1: तुस जे तो वत पाता सख मनेश करो उनकाता
0: जे सृष्ट सनी परे तिके दुष्ट के तु मरे
2: पर चंपक परे तहारे तिके तुम संकर सबतारे
0: जो कल को एक बार ते ये ताके काल इकट नहीं आया
2: रचो ताए सब काल दुष्ट रिस्ते रिद काला
0: कृपा दस्तन जाय न हरो ताके ताप तनक मोह

स्वामी सच में अच्छे साच रह, सबको सच समावे, सबको सच समावे। रिक हिरिया भरपूर राम नाम देवा मैशूर, नाय लय पराशत जाए नानक तमो खंतर पाए, जुज में जोर श्री चंद्रावल कान।